0: challenged the order, calling the reasons very vague, arguing that there's no compensation when it comes to the property or the premium that's been paid. Do remember that there are many members, close to about 15,000 members who have been paying, that premium to stay members. Employees are also fearing the loss of their job. The move has sparked a political row, with the opposition alleging a very rushed eviction. Let's get you the reactions.
1: अचानक आके हमसे कहा जी कल 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, कल बंद हो रहा है। वहां तो बहुत धक्का लग रहा है। यहाँ पे नौकरी करने के हमसे 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं किया। अचानक ऐसे लोग भेजा गया, कल अचानक हमें कल पता लगा। अब सब परेशान है, कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से, हमने खुद 36 साल हो गए हमें जॉब करते हुए। हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे?
2: मेरी उम्र देख रहे हो, कैसा हो गई काम करते, 25-30 सालों से काम करते करते ये हो गया। अब ये कल चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे वैसे ही रोड पे आ रखे, हमारी झुग्गियां वैसे ही टूट रही है। 26 तारीख को
3: रोजी रोटी छिन जाएगी तो कहाँ जाएंगे? हम भीख मांगने लायक भी नहीं रहे अब ये बुढ़ापे में। हमें कुछ नहीं है, हम इतना हाथ जोड़ना चाहते कि क्लब को आप यहाँ से बंद मत करो, हमें कहीं मत भेजो। इस टाइम पर हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमारी उम्र हो चुकी है।
4: क्लब में नोटिस आ जाएगा कि 5 जून को बंद होगा या 5 तारीख तक गवर्नमेंट के हवाले कर देना चाहते हैं, या नोटिस जो भी आया हमारे को, तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज से कोई हमारे को बताया नहीं गया। जैसे ही खबर हमारे स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, हमारे 600 एम्प्लॉय उसके फैमिली लगा करके 6,000-6,500 परिवार है, क्या होगा उनका?
0: Right, those are the employees of the Gymkhana Club, and that case that's coming up in court today. We will be tracking the very latest. For now, slipping into a short break.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ We connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.

0: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom, only on NDTV.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास
3: बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आग प्योर मसाला।
5: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
6: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
7: ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
8: वी हैव गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर। व्हाट इज इन योर लेटर? यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स।
9: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
10: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
11: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
12: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
10: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
13: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
14: Really?
13: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program.
15: Let's get it.
13: Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
17: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
6: थैंक यू।
5: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले?
6: सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
5: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
6: कहते देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
5: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
6: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
5: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों दे?
6: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
5: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
6: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
5: बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही है कि इस वक्त एक सीख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो
6: सीट।
5: ठीक ठीक तो लगा लो,
6: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है।

0: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
1: थैंक यू।
0: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते
1: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
0: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
1: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
0: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
1: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
0: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
1: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
0: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
1: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
0: बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो,
1: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही लगेगा।
0: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता है।
1: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
0: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो, क्या कहे?
1: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
6: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िए ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
7: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
8: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप। You are not stopping until the justice is served.
9: Missing, where is your son? Let me ask you that pointed question.
10: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
11: Breaking news coming in. Samarth Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
12: screen. Number
11: first on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case. Joining us live now for the first time is Brigendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
13: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
11: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
14: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
1: थैंक यू।
0: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते
1: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
0: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
1: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
0: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
1: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
0: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
1: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
0: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
1: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
0: बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो,
1: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
0: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टर माइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता है।
1: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
0: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो क्या कहे?
1: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: Big news coming in as far as Tushar Sharma's death case is concerned. The SIT has now been questioning Tushar's husband Samarth Singh. They've grilled him for 3 hours. The husband claims that Tushar was distressed post her abortion. Now the SIT is claiming that he is trying to mislead the investigators. Whether it's his laptop, his phone, his passport, all have been seized by the SIT. We have, my colleague Tanushka joining us in order. Tejri joining us in order to get us the latest on this. Tejri, take us through the details that have emerged in the case so far. First, he was on the run. He tried to surrender. Eventually, it was the Jabalpur police that arrested him. He's been in the custody. They have 7 days custody. The SIT has been grilling him, questioning him. They've recreated the crime scene as well. But, you know, time and again, what's really coming up is his demeanor. How, you know, he appears to be very calm, very composed. On the other side, how, you know, the officials are saying he's really not cooperating and that he's not really coming out with details. He's perhaps misleading the investigators. And that is what now...
4: Good afternoon, viewers. You're watching NDTV. I'm Gauri Dwivedi. The big story that we are tracking for you, Karnataka Game of Thrones, where it's headed, what's likely, and will there actually be an end to the simmering leadership tussle? We get you all those details, a quick check of the headlines we're tracking for you this Tuesday afternoon. Karnataka Game of Thrones reaches climax. D.K. Shivkumar, Siddaramaiah to meet High Command shortly. Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge may meet D.K. Shivkumar and Siddaramaiah separately. What's in store for the Chief Minister and Deputy Chief Minister of Karnataka? We decode. Congress MP trains guns on Vijay's TVK over AIADMK defection, says Rahul Gandhi is against any horse trading, asserts that horse trading is against Gandhian principles, referring to the three AIADMK MLAs who've recently jumped ship. CNG prices hiked yet again. Delhi rate crosses 83 rupees a kilo as fourth hike in 11 days as the opposition now slams the centre. Believe it or not, rape convict Ram Rahim gets yet another parole, 30 days. He walks out of Rohtak jail. This is his 16th such relief, second this year alone. SIT intensifies probe in the Tushar Sharma death case. Samarth Singh questioned for 3 hours. Investigators say he repeatedly attempted to mislead the investigation. Quad foreign ministers meeting in Delhi. India hosts the high-stakes Quad meeting as External Affairs Minister Dr. Jaishankar leads the talks, seeks stronger

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
6: थैंक यू।
5: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते?
6: सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
5: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
6: कहते देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
5: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
6: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
5: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका

0: And while shifting our focus back here in New Delhi, the Delhi High Court has refused to grant any interim protection to the Delhi Gymkhana Club against the centre's eviction notice. However, the court recorded the centre's assurance that no eviction will take place without due procedure and prior notice. The matter was heard after club members and staff associations challenged the government's order directing the club to hand over possession of its Lutyens Delhi property by June 5th. So that's not going to happen anytime soon, while also issuing summons on the petitions. The High Court has now declined to pass any interim stay, noting the centre's statement that any action, if taken, will strictly follow legal procedure. The centre has maintained that the move is linked to termination of the lease and not forcible eviction, which was ordered earlier.
1: Club notice aa chuka hai 5 June ko band hoga ya 5 tarikh tak government ke hawale kar dena chahte hain ya notice jo bhi aaya hamare ko to is bare sandarbh mein kisi cheez se koi hamare ko bataya nahi gaya. Jaise hi khabar hamare staff mein lagi to sara staff mayus mein hai, shok mein hai ki hamara family ka kya hoga, hamare parivar ka kya hoga. हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं. हमारे 600 एम्प्लॉई उसके फैमिली लगा करके 6,500 परिवार है, क्या होगा उनका.
2: अचानक आके हमसे कहा जी कल 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, कल बंद हो रहा है. तो बहुत धक्का लग रहा है. यहाँ पे नौकरी करने के हमसे 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं. हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं गया. अचानक ऐसे भेजा गया, कल अचानक हमें कल पता लगा. अब सब परेशान है. कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से. हमने खुद 36 साल हो गए हमें जॉब करते. हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे.
3: मेरी उम्र देख रहे हो, कैसा हो गई काम करते. 25-30 सालों से काम करते करते ये हो गया. अब ये क्लब चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे. हम तो भूखे मर जाएंगे. हमारे बच्चे वैसे ही रोड पे आ रखे, हमारी झुग्गियां वैसे ही टूट रही है. 26 तारीख को
4: रोजी रोटी छिन जाएगी तो कहाँ जाएंगे. हम तो भीख मांगने लायक भी नहीं रहे अब ये बुढ़ापे में. हमें कुछ नहीं है. हम इतना हाथ जोड़ना चाहते कि क्लब को आप यहाँ से बंद मत करो, हमें कहीं मत भेजो. इस टाइम पर हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमारी उम्र हो चुकी है.
5: तो हम तो चाहते हैं कि ये कल्चर को

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Navnidhi Sharma, the father of Trisha, joins me one-on-one for the first time.
5: शुरू में देखने को मिल गया था कि criminal mindset है। बेड़ी हमने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, they are chameleon people.
6: Brother, Major Harshit speaks out for the first time on national television.
7: We have been fighting non-stop. We are not stopping until the justice is served.
8: Missing, where is your son? Let me ask you that pointed question.
9: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
10: Breaking news coming in. Samarth Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
11: screen. Number.
10: First on NDTV.
12: You surrender karne aaye ho ya surrender nahi karne aaye ho?
10: NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case. Joining us live now for the first time is Rigendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
13: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
10: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
14: NDTV के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
15: थैंक यू।
14: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते
15: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
14: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
15: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
14: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
15: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
14: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
15: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
14: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
15: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
14: बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो,
15: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
14: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टर माइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता।
15: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
14: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो, क्या कहे?
15: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
16: The situation in the Strait of Hormuz right now and Iran, the last 48 hours have been tense. Is there a sense that strikes are imminent?
17: Iran can never have a nuclear weapon. And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The straits cannot continue to be closed.
16: The import of American oil is important for India, particularly because of the situation.
17: India wants to diversify its energy. We want to diversify the countries we export to.
16: There is also an issue of visas for Indians. They have to come back to India for green cards now. Why has America taken this decision?
17: Well, it's not about India. It's about the whole world. Anytime you reform a system, there's going to be some disruptions. There's going to be some hiccups.
16: How did the meeting with the Prime Minister go? What did you discuss?
17: Relationship between the President, President Trump, and Prime Minister Modi. I think that always makes it easier to have these meetings because of the personal affinity they have to one another.
16: Thank you very much for
17: thank you.
16: This
17: Thanks.
16: Thank you.
17: Thank
16: very
17: you
16: much.
17: Very much.
18: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
19: Really?
18: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
20: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज इकोनॉमी।
21: Wow.
11: Welcome back. You're watching NDTV Newsroom with me, Raisha Sehgal, and shifting our focus to other stories that are making headlines. The Quad Foreign Ministers meeting, which was held in New Delhi today. Let's now take you through the key highlights of that story. The Quad Foreign Ministers meeting was held in New Delhi today with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar leading discussions focused on the Indo-Pacific as well. He said that the meetings were

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: मीटिंग के दौरान कहा गया है कि आप जो है वो रास्ता खाली करिए। हालांकि क्या इसको लेकर वो माने हैं नहीं माने हैं, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं, लेकिन बाबा का कहना है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाबा सही समझते हैं, बताइए बाबा।
1: देखिए, एक तो जो ऑफिशियल ब्रीफिंग के बाद कहा गया नो स्पेकुलेशन, तो उसको राजनीति में बहुत ज़्यादा जो आप स्पेकुलेट करने लगते हैं तो गलत भी साबित हो जाते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि 108 MLA जो हैं वो सिद्धारमैया के साथ हैं, उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो जब मीटिंग हुई थी पिछली बार विधायकों की तो वो उनके पास है, मैंने कांग्रेस आला कमान के पास है। ओबीसी से आते हैं, एक ही ओबीसी मुख्यमंत्री है, उसको आप क्यों हटाएंगे जब राहुल गांधी इतना ओबीसी और दलित को जो है आगे लाने की बात करते हैं। और तीसरी बात ये है कि डीके शिव कुमार के पास तो सब कुछ है, अभी डिप्टी सीएम है, उनके पास दो अच्छा मंत्रालय है, सिंचाई विभाग है, साथ में बेंगलोर डेवलपमेंट का विभाग है, और वो पिछले 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं। डीके शिव कुमार के साथ दिक्कत जानते हैं कहाँ पे आ गई। यदि पिछले लोकसभा चुनाव में डीके शिव कुमार ने 28 में से कांग्रेस को 15 से ज्यादा सीटें दिलवा दी होती तो आज डीके शिव कुमार को कोई मुख्यमंत्री,
0: लेकिन वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं है, नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष की कैसे है, हालांकि खुद उनके भाई हार गए।
1: हाँ, भाई हार गए। देखिए, जब उनके भाई हार गए ना तो फिर उनका चिप्स थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत संकट मोचक हैं, सब कुछ करते हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस में परफॉर्मेंस भी
0: देखा लगता है। कोई सस्पेंस नहीं, कोई चेंज नहीं,
1: फिलहाल कोई सस्पेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। फिर 3 महीने बाद हम आके आएंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है पहली प्राथमिकता कांग्रेस आला कमान की है कि जो तीसरी सीट आपकी राज्यसभा की फंसी हुई है उसको जीता जाए, क्योंकि एक एक सीट वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक दो सीट कम हो गई ना तो खड़गे साहब को दिक्कत हो जाएगी लीडर ऑफ अपोजिशन में, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो अभी कांग्रेस यदि मजबूती से लड़ती है तो एक सीट का राज्यसभा में फायदा होने वाला, फिलहाल मुझे लगता है इसके लिए रोक दिया गया ये रिस्पेक्ट।
0: ठीक है, तो सुना आपने बाबा को, लेकिन मैं बाबा की अनुमति से ही जो मेरे सोर्स कह रहे हैं मैं फिलहाल उस पर यकीन कर रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है। और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के अभी जो फैसला है, चर्चा तो आज हो गई है, जिसे जाना है उसे जाने को कहा भी गया है, क्या वो मानेंगे और नहीं मानेंगे तो लीडरशिप क्या करेगा, इसको लेकर अभी पिक्चर बाकी है।
2: ज्ञानेंद्र, पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर NDTV पर ही लोग देखते रहेंगे, और बाबा और आप तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र बाबा से ये भी पूछे कि क्या अब कैबिनेट रिशफल हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है कि कर्नाटक में कैबिनेट रिशफल हो, क्योंकि राज्यसभा को लेकर भी चर्चा तो रही ही है, उसमें कौन जाएगा इस पर भी कोई टिप्पणी आ रही है कांग्रेस आलाकमान से?
0: आदित्य, इससे पहले कि मैं बाबा के पास जाऊं, मैंने खुद ये सवाल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री से पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट रिशफल का एजेंडा आया ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुई कैबिनेट रिशफल पर, और ये बहुत हैरानी की बात है। मुख्यमंत्री 6 महीने से कांग्रेस लीडरशिप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट रिशफल करने के लिए, 3 साल से कैबिनेट रिशफल नहीं हुई है और सारे MLAs परेशान हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाब उनको देते नहीं बन रहा, और कैबिनेट रिशफल सबसे बड़ी डिमांड है। तमाम जो मुख्यमंत्री की रेस सिद्धारमैया और डीके के बीच, सिद्धारमैया तो खैर कुर्सी पर ही है लेकिन बाकी MLAs की नजर CM की कुर्सी पर नहीं है, उनकी नजर मुख्यमंत्री के पद पर है, और वो रिशफल चाहते हैं। रिशफल जब होगा 80% से ज्यादा लोग बदले जाएंगे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री कहकर गए। मेरे साथ बाबा हैं। बाबा, ये कैबिनेट रिशफल कब होगा और क्यों नहीं हो रहा?
1: मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ, कैबिनेट रिशफल अभी क्यों करना जब आपको राज्यसभा के लिए 1-1 MLA का वोट चाहिए।
0: उसके बाद होगा
1: ना, आप समझिए, 1-1 MLA का आपको वोट चाहिए। आपने आज आप मंत्री हैं, कल मैंने रिशफल में आपको हरा दिया, परसों आप भाग गए इलेक्शन के दिन, बीमार पड़ गए, कहीं और चले गए, फिर क्या होगा? वहाँ तो 1-1 सीट फंसी हुई है, 1 सीट तो कांग्रेस अध्यक्ष को मिलेगा, दूसरी सीट के लिए मैं अभी भी कह देता हूँ कि डीके शिव कुमार को उनके भाई के लिए ऑफर की गई है, तीसरी सीट जो है वो इन सब की जिम्मेवारी है कि मिलकर जीतवाए, उसी तरह वहाँ MLC की सीट जो है वो वहाँ पर जिम्मेवारी है। आज आपने कैबिनेट रिशफल कर दिए, 4 लोग को कैबिनेट से ड्रॉप कर दिए, और वो यदि नाराज हो गए और वो वोटिंग के दिन नहीं आए तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रायोरिटी ये है कि पहले आप ये दोनों काम कर लो, उसके बाद आप कैबिनेट रिशफल करो, उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बदलो, वो तो कभी भी बदल सकते हो आप, उसमें क्या दिक्कत है? यदि राहुल गांधी कह दे तो सीतारामैया को इस्तीफा देने में एक मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले सीतारामैया ने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो जाए,
0: वो तो हो गए।
1: वो अब उनका कहना कि अब वो राज्यसभा में भी कहीं भी भेज दोगे आप, वो चले आएंगे, लेकिन दिक्कत ये वही आती है कि एक ओबीसी को, एक जिसका MLA का सपोर्ट है, फिर आप कहोगे MLA का सपोर्ट तो आप हमें बना दो तो कल हमारे पक्ष में आ जाए, जाएंगे एमएलए, ये बात भी सही, लेकिन कास्ट कम्बिनेशन भी देखना पड़ता है।
0: वो कलेगा जिस समुदाय से आते हैं शिव कुमार, वो भी ओबीसी है,
1: ये देखना पड़ेगा आपको कि वहाँ पे ओबीसी है या नहीं है कर्नाटक में। लेकिन ये कुड़वा तो होते ही है, और ये कास्ट जो पूरे इंडिया में कुर्मी के नाम से जाना जाता है उससे पहचान, तो यही सब

0: चीजों को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने फिलहाल यहां टाला। यहां पे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ये कर्नाटक है, कर्नाटक में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी अपना इंटरेस्ट है, वो आते हैं, जीवन भर वो उन्होंने वहीं की राजनीति की है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, ये जलेबी है, ये स्टेट, ये वो केरल नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया और वहां हो जाएगा, ये जलेबी में से आपको रास्ता निकालना।
1: बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन बाबा की पारखी नजरें जो है सब कुछ देख पा रही है और बाबा स्पष्ट है कि कोई चेंज नहीं होने जा रहा। और कैबिनेट रिशफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आने वाले दो हफ्ते के बाद ही वहां पर चुनाव होने हैं राज्यसभा के, और इसीलिए कैबिनेट रिशफल पर चर्चा नहीं हुई है, ये बाबा का कहना है। और लेकिन जो कयास है लीडरशिप चेंज को लेकर के वो बदस्तूर है, और जो लीडरशिप चेंज का एक फार्मूला है संभावित, उसके तहत ये जैसे बाबा कह रहे हैं कि एक राज्यसभा खड़गे होंगे, एक राज्यसभा डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश जो बेंगलुरु रूरल से सांसद थे, हार गए पिछली बार, उनको भेजा जा सकता है। हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वो एक राज्यसभा की सीट सिद्धारमैया को भी ऑफर की जा सकती है, बशर्ते कि वो इस्तीफा देने को तैयार हो जाए, रास्ता बनाने को तैयार हो जाए। तो कर्नाटक का ड्रामा, कर्नाटक का नाटक अभी उस पर से पर्दा नहीं हटाए, कांग्रेस आलाकमान अपनी तरफ से जो अटकलें हैं, स्पेकुलेशन है, उस पर विराम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तमाम सोर्सेज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी इस कहानी को खत्म मत मानिए, अभी इसमें कुछ डेवलपमेंट्स बाकी हैं।
2: जी, हमारे साथ बने रहिए जैनेन्द्र, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमें समझ आ रहा है कांग्रेस के लिए, अभी राज्यसभा के चुनाव हैं, उसके बाद हो सकता है कि कैबिनेट का रिशफल हो, और उसके बाद हो सकता है कि एक सोल्यूशन जो है इसको लेकर निकले। अभी तक जो है सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और जो इस टसल को सुबह से खबरों में देख रहे हैं, उनके लिए जैनेन्द्र अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये टसल इतनी गंभीर क्यों है, और पिछले 3 सालों में लगातार हमने देखा बार बार ऐसी मुहिम रही डीके कैंप की कि वो अपना जो है नुमाइंदगी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगाएं, लेकिन क्यों ये नहीं हो पा रहा है, कितनी बार ऐसी जो है संभावनाएं बनी लेकिन जो ये कॉम्बिनेशंस हैं डीके शिवकुमार के फेवर में नहीं गए। जैनेन्द्र के साथ हम जुड़ेंगे। जैनेन्द्र कंटिन्यूज टू जॉइन अस अलोंग विद मनोरंजन भारती फ्रॉम न्यू दिल्ली, वेयर द क्रूशियल मीटिंग ऑफ द कांग्रेस हाई कमांड अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका वर अंडरवे। लेट्स गो अक्रॉस टू जैनेन्द्र वंस अगेन, हु जॉइन्स अस फ्रॉम न्यू दिल्ली वेयर दैट क्रूशियल मीटिंग वाज अंडरवे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जस्ट लेफ्ट। जैनेन्द्र, जो लोग हमें अभी जुड़ रहे हैं सुबह से, इन अटकलों को सुन रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप बता सकें साफ शब्दों में कि ये इतनी बड़ी गंभीर जो है टसल क्यों रही पिछले 3 साल से, लगातार जो डीके कैंप है बार बार अपनी नुमाइंदगी लगाता रहा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। ओके, जैनेन्द्र विल जॉइन अस इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ, देयर इज सम टेक्निकल डिले इन द कम्युनिकेशन, बट दिस इज द बिग डेवलपमेंट कमिंग एट दिस आवर इन कर्नाटका। देयर विल बी अ स्टेटस को एज ऑफ नाउ, देयर इज नो फाइनल डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय द कांग्रेस हाई कमांड आफ्टर अ मैराथन 6 आवर्स मीटिंग अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार। एज ऑफ नाउ, Siddaramaiah continues to be the Chief Minister of Karnataka. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar also continues in the position. Speaking to the reporters, they did not reveal much either about the final decision of the High Command or what will happen next. Will there be any kind of a cabinet reshuffle, berths being changed in the cabinet of Siddaramaiah? What will happen in the road to the Rajya Sabha elections? That is very, very crucial. At least 3 seats at stake there in Karnataka for the Congress party. But it does seem like that there is some kind of a message that has been conveyed to the top brass of the Congress party in Karnataka, and as of now the status quo is going to only continue. The Game of Thrones in Karnataka only getting more mysterious, only getting more interesting by the day. We will be following that story very, very closely, but the big development at this hour, we are continuously monitoring the movements of D.K. Shivakumar and Siddaramaiah, trying to find out will they speak to the media, reveal details of what was discussed inside that important, crucial meeting that took place in New Delhi. And now this is what we are picking up. Sources are telling us the Congress to decide on the leadership after the Rajya Sabha polls. Big breaking news coming here on NDTV. This is regarding Siddaramaiah and the team planning to leave Delhi. That's what we are picking up. No intimation has been given of any more meetings in the national capital. Decision on the leadership will be in fact revealed post the Rajya Sabha elections in the state of Karnataka. Big development at this hour, breaking news here on NDTV in regard to the meeting that was taking place in Delhi. Siddaramaiah and his team are planning to leave Delhi immediately after that crucial meeting. No intimation of any more meetings in the national capital, and decision on the leadership will only be revealed post the Rajya Sabha elections. Deepak continues to join us from Bengaluru. Deepak, what's the latest that you're picking up? You've been tracking DK Shivakumar and Siddaramaiah very, very closely on this Game of Thrones. Will we know what kind of action will they take? Has there been a decision, or have they left this for the Rajya Sabha polls, and post that a final call will be taken?
3: Well, Aditya, I'm just picking up all arrangements are being made, protocols are being set for the Chief Minister's departure from Delhi. This would essentially mean that they have not intimated him about any more meeting. Whether that will change in the next half hour, we don't know, because things are quite dynamic at this point in time. But just about 5 minutes ago, I did get a confirmation that they are doing everything now to return to Bengaluru. That means whatever conversation that they needed to have is done. Today, when Mr. K.C. Venugopal said the conversation was all about the Rajya Sabha seats, we should say that yes, there was a bit of a conversation on the Rajya Sabha. Well, if you think that it was 6 hours of Rajya Sabha conversations, probably not. There was a discussion about the leadership issue. Now, what I'm learning is that this discussion as of now will not continue or be prolonged any further, and any sort of decision that needs to be announced formally is likely to happen once the Rajya Sabha elections are over. So it's quite interesting, and especially when you consider the larger scheme of things here, if we've been putting this out, one of the options that could have been presented to Mr. Siddaramaiah is to take up the position of leader of the opposition. And if he is elected as a Rajya Sabha member, and if an announcement does come in to actually put his name, then things will become amply clear that this is an option that they're really looking at. But time and again, Mr. Siddaramaiah has been somebody who has said that he's not interested in national politics, he's not interested to go to Delhi. So how will he really look at this option? If it was given to him, we'll know in the next few hours. But as of now, a couple of things that we are picking up with certainty is that there's not going to be any more round of meetings pertaining to the leadership in the national capital right now. Mr. Siddaramaiah is planning to fly back to Bengaluru, and any sort of formal announcement of a decision on the Karnataka leadership, if it is going to come by, is not going to happen anytime now. It is going to happen only after the Rajya Sabha elections.
2: All right, Deepak, continue to stay with us. Deepak getting us details of the Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah, leaving Delhi anytime now. Protocols are in place for the same. It is possible that the final decision on the next roadmap for the Congress Party in Karnataka will be decided post the Rajya Sabha polls. Very, very crucial for the Congress Party. Janendra also continues to join us from Delhi, where he has been tracking the marathon 6-hour meeting that took place today. Janendra, Deepak hame bata rahe hain ki Mukhyamantri Siddaramaiah to ab kuch kar rahe hain airport ki taraf, Karnataka wapas ja rahe hain. To Baba ki bhavishyavani jo hai puri tarike se sach nikal rahi hai ki abhi हाल में कोई मीटिंग नहीं होगी, अभी राज्यसभा चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आगे की रणनीति तय की जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बाबा, बिल्कुल इस बात पर कायम है। और देखिए, 8 जून जो मैं देख पा रहा हूं नोटिफिकेशन राज्यसभा का, 8 जून है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा, और 4 वैकेंसी है कर्नाटका में। अगर वहां पर 5 नॉमिनेशन हुए तब चुनाव की नौबत आएगी, और वोटिंग का जो डेट ऑफ पोल है वो 18 जून है। तो अगर 4 नॉमिनेशन हुए तब तो कोई चुनाव होगा ही नहीं, और अगर 5 नॉमिनेशन हुआ, बीजेपी ने 2 उम्मीदवार उतार दिए, तो फिर पोल होगा और वो फिर 18 जून को चुनाव जाकर के तय होगा। तो क्या तब तक के लिए बाबा ये सब टल गया है?
0: मैं एक ही लाइन बोलूंगा जिससे कि स्थिति साफ हो जाएगी। यदि ये जो कांग्रेस के 3 नॉमिनेशन है, एक तो खड़गे साहब करेंगे, यदि एक डीके सुरेश जो कि डीके शिवकुमार के भाई हैं, यदि उनका नॉमिनेशन हुआ तो आप मान लीजिए कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। यदि डीके सुरेश के बदले यदि सिद्धारमैया साहब का हुआ, इसका मतलब चेंज है। तो आपको इस राज्यसभा का इलेक्शन से ही इंडिकेशन हो जाएगा।
1: एक तरीके से जो कहा है वेणुगोपाल ने कि हमने राज्यसभा की चर्चा की, तो एक किस्म से राज्यसभा की चर्चा में सारी चर्चा उसमें आ जाती है।
0: मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि एक जो डील की बात हो रही है, डील वर्ड अच्छा नहीं होता है, एक जो पॉलिटिकली जो सांत्वना की बात, जो कल से मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे, डीके सुरेश जो डीके के शिवकुमार के भाई हैं वो राज्यसभा आएंगे, और खड़गे जी आएंगे, और डीके शिवकुमार को एलिवेट किया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम है, लेकिन मंत्रालय में अभी उनके पास 2 मंत्रालय, लघु सिंचाई विभाग है, इरिगेशन है, और बेंगलोर डेवलपमेंट है। क्या पता उन्हें होम दे दिया जाए। समझ गए, और उसके बाद ही रिसफल होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ वो कयास लगाने की ज़रूरत है। थोड़े दिनों की बात है, 20-20 दिन में ये आपको पक्का पता चल जाएगा।
1: चलिए, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि क्या चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। ये बाबा का मानना है और इनका मानना है कि कोई बदलाव के मूड में लीडरशिप नहीं है। डीके शिव कुमार को और इंतजार करना होगा, और संभवतः अगले कैबिनेट रिशफल में उनका ओहदा जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है पोर्टफोलियो के मामले में।
2: जी जैनेन्द्र और मनोरंजन भारती, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो द गेम ऑफ थ्रोन्स इन कर्नाटका ओनली कंटिन्यूज, नो फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन येट, बट वी विल बी ट्रैकिंग दैट स्टोरी वेरी वेरी क्लोजली टू द राज्यसभा पोल्स एंड ऑफ कोर्स द कैबिनेट रिशफल if at all it happens in Karnataka. But here, it's time to take a quick break, but Nationwide at 6 returns after break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
4: थैंक यू।
3: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते
4: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
3: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर

वो हमें सपोर्ट करेंगे, हम हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम पहली बार प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यदि हमारे आर्टिस्ट

0: father of Twisha joins me one-on-one for the first time.
1: शुरू में देखने को मिल गया था कि criminal mindset है. भेड़िये ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर. They are chameleon people.
2: A brother, Major Harshit, speaks out.